ए नरक अन्ना रुणिंग कुदि कुदि वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरकया एल्लवा कुम्मे फहरकु एतांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलकु त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।

अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम फिरहे ने गहायत और कुरिमत लान जे एक एक बार रहा था होगा दीन को तो खंदत कुरान गए अंगादे मुस्लिम फिरहे ने अब प्रोग्राम के इंतजार वति पे एम हम पे फोन नंबर हबा प्रोग्राम है को मैं बदल खोल दी अलोन अलोन में मोहम्मद रमेश मुस्लिम फिरहे ने खास को गे कुरिया गंदा बगत कोली नमस अंग हो नमस में प्रोग्राम फायदा हो दी दाने फिरहे को दिन तरबियत करम गावेस आदि ए बंड दिमाग फिरहे ने मालूमात हिस्सा करम गा मुहिम रोले अदा करे दान तजुबाकार इल्मवरिंग के अरिहुं मुहिम मालूमात के इराकुरविया मेरे प्रोग्राम में फोर को देवेने।